जाके देखत द्वारी, काम क्रोध ही निवारी। जी हों बल बल जाऊं, सतगुर साचे नाम पार। राज जोग ताकत दियन गुर रामदास, प्रथमे नानक चंद जगत पयो आनंद। तारण मनुख जन कियो प्रगास, गुर अंगद दियो निदान। अकथ कथा ज्ञान पंच भूत बस कीने, जमत ना त्रास। गुर अमर गुरु सरी सत, कलयुग राखी पत। अगन देखत गत चरण कमल जास। सब बिद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न, सब बिद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न। राज जोग ताकत दियन गुर रामदास प्रड। जिस हैं तारियो तरत आर व्योम, आर पवन ते नीर सार। अबर अनल अनाद कियो, शास्त्रेख नेस सूर देन सैल तरु। फल फुल दियो सोर नार सपत समुंदर, क्या तारियो त्र पवन जास। सोई नाम सोई एक नाम, हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगास। कच्चो कंचन पयो, शब्द गुर श्रवण सुनयो। बिखते अमृत होयो, नाम सतगुर मुख पण्यो। लोहो होयो लाल, नदर सतगुर जद तारे। पाहण माणक करे, ज्ञान गुर कहो बिचारे। काठ हो शरी खंड, सतगुर कियो। दुख दरिद्र तिनके गए, सतगुरु चरण जिन परसया। से पास प्रेत सोर नार भय, जाम गुरु होय बल। तनहे क्या गर्व दिजहै, जाम गुरु होय बल। लख बाहे क्या किजै, जाम गुरु होय बल। ज्ञान अर ध्यान अनन पर, जाम गुरु होय बल। शब्द साखी सो सच अहंकार, जो गुरु गुरु अहनस जपै। दास भट बेनत कह, जो गुरु नाम रिद मैं तरै। सो जन्म मरण दोहूं थे रह, गुर बिन घोर अंधार। गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध। गुरु बिन मुक्त न पावे, गुर कर सच विचार। गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन। अगन कटे सब तेरे, गुर नायण बैण गुर गुर करहो। गुरु सत काव नल कह, जिन गुरु न देखियो न कियो। ते अकथ संसार मैं, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। तारण तारण समरथ कलयुग सुनत, समाद शब्द जस केरे। फुन दुखन नास सुखदायक, सुर जो तारत ध्यान बस्त ते नेरे। पूरा पुरख हृदय हर सिमरत, मुख देगत अग जाहि परेरे। जाओ हार बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत, गुरु गुरु गौर कर मन मेरे। गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, हुती जो प्यास प्योस पिवन की। वंशत सिद्ध कौ बिद मिलायो, पूरन पो मन ठौर बसो। रस बासन स्याओ जो दहं दिसतायो। गोविंद बाल गोविंद पुरी, सम जलन तीर बिपास बनायो। गहयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। समरथ गुरु सिर हथ तरयो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो।
जस देख चरन अघन हरयो। निस बासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भान डरयो। भान दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परम करयो। रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ धरयो। अब राखो दास पाठ की लाज जैसी लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हरनाख सफारे कर आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी कीनत वस्त्र दीन बौ साज। सुदामा अपदा ते राखिया गनका पढ़त पूरे ते काज। श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए राखो दास पाठ की लाज। झोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी हो शब्द हर हर जपै नाम नव निध अपै रसन अहनस रसै सत कर जानियो। फुन प्रेम रंग पाइए गुरमुख त्याईए अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानियो। बचन गुर हृदय धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उधरहो द्वार हर मानियो। जौता सब सुख इत उत तुम वंशवाओ गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो। गुरु गुर गुरु जप सतकर आगम गुण जान निधान हर मन तरह त्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय तार। फुन गुरु जल बिमल अथाह मजन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार। सदा निरवैर निरंकार निरपौ जपै प्रेम गुर शब्द रास करत दृढ़ भगत हार। मुग्ध मन ब्रह्म तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार। गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाई है उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत ले बलाई है। फुन गुरु परमल सरस करत कंचन पारस मैल दुर मत हिरत शब्द गुर त्याई है। अमृत पर वाह छुट कंत साध द्वार जिस त्या ज्ञान गुर बिमल सार संत सिख नाई है। नाम निर्वाण निदान हार पुर तरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाई है। गुरु गुर गुरु जप मन रे जांकी सेव सेव सिद्ध साधिक सुर असुर गण तरहे ते तीस गुर बचन सुन कन रे। फुन तरहे ते संत हित भगत गुर गुर कर है तरयो सं प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे। तरह नारदाद सन काद हार गुरमुख है तरह एक नाम लागत जहो रस अनरे। दास बेनत कहै नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे। श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सतयुग जिन ध्रुव पर। श्री प्रहलाद भगत उदरियं हस्त कमल माथे पर धरियं। अलख रूप जी लख्या न जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई। गुर के बचन सत जी तारहो मानस जन्म देह निसतारहो। गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया न कोए गुर प्रसाद प्रभ पाइए गुर बिन मुक्त न होए। गुर नानक निकट बसै बनवारी तिन लहना थाप जोत जगतारी। लहने पंथ धर्म का किया
अमरदास भले कौ दिया तिन सरी रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निध अप्यो अप्यो हर नाम अखै निध चहु जुग गुर सेवा कर फल लहियं बंदहे जो चरण शरण सुख पावहे परमानंद गुरमुख कहियं परतख देहे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण जे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कार बचित चाओ जे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कार बचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार जे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गति जीत है जम लोक पतत जे प्राणी हार जान सेव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कार मोन वंश है जाकी शरण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण भगा एह आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन कौ पदवी उच पाई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की वृथा गई अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया दिब दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै एक पढ़ें सुनहें गावें प्रभात है करें स्नान स्नान करहें प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए बरस पारस कौ ज्योत स्वरूपी ध्यान तरन जग जीवन जगनाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्णन सतगुर गुर सेव अलख गत जागी श्री रामदास तारण तरन जिन्हो बात निश्चल त्रु जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहिब सब उपर मन बाच क्रम सेवी है सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब कहत माँ जसोद जिस है दही भांत खाहे जियो देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई किंकनी शब्द चंद कार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस ब्रह्म ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो सत साच सरी निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो राम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो सुथार चित भगत हित पेख तरयो हरनाक्ष हरयो नख बिदार जियो शंख चकर गदा पद्म आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच सरी निवास
आद पुरख सदा तू ही। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। पीत बसन कुंद दसन प्रसहत कंठ माल मुकुट शीश मोर पंख चाहे जियो। बेब जीर बड़े धीर धर्म अंग अलख अगम खेल किया अपने उशाहे जियो। अकथ कथा कथी न जाए तीन लोक रहया समाए। सुतह सद रूप तरयो शाहन कह शाह जियो। सत साच सरि निवास आद पुरख सदा तू ही। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो। बलहे शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवार ने कलंक बजी डंक चढ़ू दाल रविंद जियो। राम रवण दुर्त दवण सकल पवन कुशल करण सर्ब भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो। जर्म कर्म माच काछ हो ब्रा जमना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो। नाम सार ही तार ताज बेकार मन गयंद सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो। श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। गुर कहया मान निज निदान सच जान मंत्रे है निसबासर होए कल्याण। लहे परम गत जियो। काम क्रोध लोभ मोह जान जान स्यों शाड तो हो। होमै का बन फंद काट साध संग रत जियो। देह गेह त्रेह स्नेह चित बिलास जगते हे। चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार ही तार ताज बेकार मन गयंद श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका। निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तय अगणत तिन कौ मुह पया मन मद का। चबरासी लख जोन उपाई रिजक दिया सब हूँ कौ तद का। सेवक कै परपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका। वाह वाह का बड़ा तमाशा आपे हसे आपे ही चितवै। आपे चंद सूर प्रगासा आपे जाल आपे थल थमन आपे किया कट कट वासा। आपे नार आपे फुन नारी आपे सहारु आप ही पासा। गुरमुख संगत सब विचार वाह वाह का बड़ा तमाशा। किया खेल बड मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जाल थाल गगन पयाल पूर रहया अमृत ते मीठे जाके बचना। तू जल थल गगन पयाल पूर रहया अमृत ते मीठे जाके बचना। मन है ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाइए परमार्थ सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड मेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद आद जिस कोई न जाने। शिव विरंच तार ध्यान नित जिस बेद बखाने। निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई। भंजन गढ़न समथ तारण तारण प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसै। सरी सतनाम करता पुरख गुर रामदास चित बसै।
गुरु समर्थ गह करिया त्रोव बुद्ध समत समारण कौ हुन त्रम तो जा फिर अंत सदा अग पुंज तरंग निवारण कौ मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कौ हर नाम बोहित बड़ो कल मैं पव सागर पार उतारन कौ संतत ही सतसंगत संग सुरंग रते जस गावत है त्रम पंथ तरयो तरणी तर आप रहे निवतार न तावत है मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छत ही फल पावत है रब के सुत को तन त्रास कहां जो चरण गुरु चतलावत है निर्मल नाम सुधा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथा आत बड सुबर सदा सब बिदरत नागर संत मराल करहें कंतु हल तेन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कलयुग धुरत दूर कर बेकाओ दर्शन गुरु सगल सुख सागर जा को मुन ध्यान तरै फिरत सगल जुग कबहु न को पावै आत्म प्रगाश कौ वेद बाणी सहत बिरंच जस गावै जा को सेव मुन गह नात जात कबलास कौ जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कौ सो तेन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई।

जेवड़ आप देवड़ देरी दात जैन देन करके कीती रात खासम विसार हैं ते कम जात नानक नावे बाज सुनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे करम सतगुर सरनाई।

आओ हार जन केवड़ भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृपता सह मिल संगत गुण प्रगास।

डूबियले मान एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलियार हो ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख।

है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे भरे है, मरण काल का त्रास ने भरे है, हो जो सदा हमारे पछा सरिया तुझ जो करे हो रक्षा, राख ले हम रखनहारे साहिब संत साहिब प्यारे।

सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोहबद कियो, कड़ कड़ के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, कट कट के बट बट की जानै, जब उद करख

प्रथम संसार एका रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं पूपा अंडज जेरज सिद्ध जकीनी उतपुज खान बहोर रच दीनी कहूं भूल राजा अब बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाई चंपव आदि जुगा आदि स्वरूप स्वयं पव।

प्रवरण काता जे आसतोज तब शरणी परे तनके दोष्ट दुखत हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं।

अतेक न मान्यों। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यों। सरियस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहूं सब तोहे बखान्यों। दोहरा

और सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज से ती मन वजियां वधाइयां, राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां, शब्द तां गावो हरी केरा मन जिनी बसाया, कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया, जिन इच्छा सब पजाइया सदा कुर्बान कीता गुरविट हो, जिस दियां ए वडियाइया कहे नानक सुनो संत सब धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सभागै, कर सभागै शब्द वाजे कलाजित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जनक से नाम हर कह लागे, कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो बड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विस्तूरे,

नानक बिनुवे जिसे सरेव, नानक बिनुवे जिसे सरेव, कई कहेंगे जी किसनू सरेवी है, कहने जाके जी पराना, जाके जी पराना, ओनू याद करो जिसने तुहानू जिंद दिती है, तुहानू प्राण दिते। जे ये मन सुन के तैयार हो जाए ते फिर गल बन जाएगी, ते पातशाह कहिंदे ने फिर जिहदे नाल काम होवे ओनू समझाउणा ते पैंदा, ओहदे नाल सांझ ते पैदा करनी पैंदी है। ओहदे लई भाई रोज नितनेम करो, रोज इशनान करके सिमरन करके नितनेम भी करो। बस नितनेम जिहड़ा उसे करन लग पिया ना, ओहदियां सब मुश्किलां हल हो जाण। ओहदे च लिखिआ है, ए मेरे पितर प्यारे मन, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए कुटुंब तू जे देखदा चले नाही तेरे। एदू सरल सौखी शब्दावली च कौन समझाए। कोई कहे बाहू लाल के नहीं जी मेरे नाल चले। महर्षि वाल्मीक ने यह भुलेखा सी महात्मा ने दूर कर दिता। वह आख्या भलिया आ जिहड़ा काम तू करदा है वाटे माण समाण दा वाल्मीक बटवारा, यह क्यों करदा तू? हमें तुहानू दसण दी लोड़ है। अपने परिवार लई करदा, अपनी पत्नी लई करदा, अपने बच्चियां लई करदा, अपने मां बाप लई करदा। कहिंदे ठीक, यह दस भी वह तेरे नाल चलणगे। हमें क्यों नहीं चलणगे? जिन्हां वास्ते मैं सारा कुछ करना, क्यों? ये भुलेखा है मन, ते भुलेखे विच असी मारे जा रहे, भुलेखे विच असी अपना सारा जीवन गवाई जा रहे हां। इहदा ये मतलब नहीं भी तुसी किरत ना करो, इहदा ये मतलब नहीं तुसी दुकानदारी ना करो, नहीं नहीं, उहदे विच हेरा फेरी ना करो। करो तो जरूर, पर जिन्हां लई करदे हो उन्हां ने साथ नहीं। हे मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए कुटुंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले, साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाई, ऐसा कम मूले न कीजे जित अंत पछो आई। महाराज फिर मेरे नाल की चलेगा? सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच। लो जिन्हां दा मन तैयार हो गया, फिर बाबा जी कहिंदे ने अपनी असलियत नूं समझो।

गुरमुख सोई सहज समावे, गुरमुख सोई सहज समावे, मेहनत की भाई कुलबीर सिंह ने। मैं तो उदे उत्ते थोड़ा जहा पॉलिश कर दी, उन्होंने मेरे जिम्मे से लाता, मेरे जिम्मे लाता, इसलिए मैं उन्होंने थोड़ा खोलने का यत्न किया। भाई जे सहज चाहिए, जे अपने घर में भी सहज चाहिए, बाहर भी चाहिए, फिर गुरु अर्जुन देव पातशाह पुछो, वो कहते ने बस एक नाल जुड़ जाओ। जगह जगह से तुम जुड़ोगे, जगह जगह से कोई थोड़ी गल मनेगा कोई नहीं मनेगा, एक नाल जुड़ जाओ। रखा एक हमारा स्वामी, रखा एक

तू वर्तन फिर समा हो गया। 5 मिनट शायद उत्ते हो गए, कड़ी बहुत दूर लगी है ते 5 मिनट हो ही गए ना उत्ते। फिर सानू मिलेगा कि महाराज वो भी कह रहे जे तुसी इस असुर ते चलोगे फिर घर सुख वसया बाहर सुख पाया, घर सुख वसे बाहर सुख पाया।

0: केलबोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

0: केरबोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874।
4: इस वास्ते मनुखी जगत विच एक आम मुहावरा वर्तिया जाता है कि समय का प्रभाव है, वक्त की गल है, समय की खेड है। समय का जो प्रभाव बनता है, दरअसल बहुत सारे मनुख इको ही तरह की सोचनी दे हो जान तो बकायदा एक समय नू जन्म देंदे ने, एक तरह के वक्त नू जन्म देंदे ने। जैसे महात्मा बुद्ध दे समय एक लहर उठी ते हर एक भिक्षु बनन दे फखर महसूस करदा सी। भिक्षु किसे गली दे चो लंघ जाए ते गली दे वसनीक समझदे सन साडा मोहल्ला पवित्र हो गया। भिक्षु बनना माण वड्याई की गल हो।

मूर्ख पंडित हुकमत हुज्जत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गावावे मंगे मोख द्वार। जति सदावे जुगत न जाने छड़ बे घर बार, सबको पूरा आपे होवे घट न कोई आख। पत परवाना पिछे पाए कनानिक तोलिया जापे, मल्ला पहला वदी सव जग नानका सच्चा वेखे सोए। सबनी छाला मारिया करता करे सोए, अगे जात न जोर है अगे जीव न

कोकला मधुर धुन बचन सुनावही। जैसे देखे श्याम कटा गगन कमांड कोर, मोर ओ पपीहा शुभ शब्द

जैसे प्रफुल्लित कमल सरोवर विखै मधुप गुंजारत आनंद उपजावही मधुप गुंजारत आनंद उपजा।

आप मोह कराए सब पाप लह जाई सब पाप लह जाई सब पाप लह जाई। गुर सिख हर बोलो।

एक रहे सुख कटूले, एक रहे सुख कटूले, एक रहे सुख कटूले, एक रहे सुख कटूले, एक रहे सुख कटूले।

जिस मस्तक है लेखा गुर मिल हर पाए, जिस मस्तक है लेखा गुर मिल हर पाए, जिस मस्तक है लेखा गुर मिल हर पाए।

मत परम भूलो भूलो मत परम भूलो भूलो मत परम भूलो भूलो मत परम भूलो भूलो मत परम भूलो भूलो अब कलू आयो रे इतना नाम भोलो भोलो

गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एह मानस देही पाई। इस देही को सिमरै दे, सो देही भज हर की सेव, भजो गोबिंद फूल मात।

से मस पे हैं गिल पिया से उसे मस पे हैं से मस पे हैं से उसे मस जीवन बस बस जीवन बस बस जीवन बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस बस सार संगत सत खंड सात संगत सत खंड आए चरोखे खोले बारी पादशाह।

कीमत कीजे, क्यों कीमत कीजे, क्यों कीमत की। हर का नाम अमोल है, हर का नाम, हर का नाम।

सच हिम्मत की। गुर शब्दी कमल बे कथया, गुर शब्दी कमल, गुर शब्दी कमल बे कथया, गुर शब्दी एव हर रस पीजे, एव हर

सद सदी है सद सदी है सद सदी है सद सदी है सद सदी है सद सदी है सद सदी है सुन पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू पैसू प

सतगुर अपना ताए है मत बुद्ध पाइए ताए है मत बुद्ध पाइए ताए है मत बुद्ध पाइए रतन

हर हर नाम जपंतया कछ न कहे जमकार, हर हर नाम जपंतया कछ न कहे जमकार, कछ न कहे जमकार, कछ न कहे जमकार, कछ न कहे जमकार।

हर का नाम से आए कह ओ हरे भाई कर्म लिखन से पाई है सुहाई कर्म लिखन से पाई है भरसन से पर मोरिया कर पाई भरसन से पर मोरिया साधु सुख।

रतन जन्म सफल तुलसिया दर्शन को बल भरिया दर्शन को बल मेरे मन गुर गुर गुर सज सजिया मेरे मन जी जब गुरु गोपाल कब सोई।

हर रस अमृत पियाए, हर रस अमृत पियाए, हर रस अमृत पियाए, हर रस अमृत पियाए, हर रस अमृत पियाए।

सदैवं प्रवाह जय अजाय भगवती शांत तब प्रसाद के जहर जूर है कि हाजर है जूर है हमेशन सलाम है समाज तुलकलाम है के साहिब दिमाग हैं के उस नाग हैं के कामल करीम हैं के राज करीम हैं के रोजी दहन हैं के राज करहंद हैं करीमल कमाल हैं के उस जमाल हैं गनीमल खराज हैं गरीबल नवाज हैं हरीफुल शिकान हैं रासल पकान हैं कलंक प्रणास हैं समाज तुल निवास हैं कंजल गनीम अर जय करहीम हैं।

मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर भर गांजू हर नर पर पांज गण गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखांडू भर नर मांडू अन पव नाशु मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल धन मुदाम अंश जंग आसन पंग उपमा पार गित उधार जल थल मांड दिश विश पंड जल थल महंत दिश विश विहंत अन पवनाश त्रित तर तुरास आजन बाह कसदाह ओंकार आदि कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर काल कर कर प्रणाम चरण नाम चरण तान चित चरण नाम अंश जगात अज जिन बात अंजन जगात अंदरंज बात आन टुट भंडार अंठ टपार आडीठ धर्म अतटीठ कर्म अणब्रणनंत दाता महंत हर बोल मना शांत दव प्रसाद करुणालया है अर्गालया है खलखंडन है मह मुंडन है जगदीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है द्रद के करण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वंग पर हैं सर्वंग कर हैं सर्वपास हैं सर्वनाश हैं करुणा कर हैं विश्वम पर हैं सर्वेश्वर हैं जगदीश्वर हैं ब्रह्मांड हैं खलखंड हैं परते पर हैं करुणा कर है जप जप है सप सप हैं अकृत अकृत अमृत अमृत हैं अमृत अमृत हैं करुणा कृत है कृत अकृत तरणी धृत हैं अमृतेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृत अकृत अमृत अमृत हैं अजबा अकृत है अमृत अमृत है निर्नायक है गलकायक है विश्वम पर है करुणालय है रिप दापन है जप जापन है निरपनायक है सर्वपायक है बहुपंजन है अर्गंजन है रिप दापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरदा हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म वास है जस के जास है पुजंग प्रयात छंग नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग धाम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूज नमो पान पाने नमो कल कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बांके पंगी स्वरूपे अनंगी अना मे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक श्री शंभ

कृपा करें। ता नाम ध्याई जियो, सतगुर मिले सुपाए, सहज गुण गाइए जियो। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जन ते पहर, पहर ते करियां, आव कटै तन सीजै, काल अहेरी फिरै बदक जाओ, कहो कवन ब्रज की जय। दैन ते पहर, पहर ते घड़िया, आव कटै तन सीजै, काल अहेरी फिरे बदक ज्यों, कहो हो कवन बिद की जय। सो दैन आवन लागा, मात पिता भाई सुत बनता, कहो हो को है काकार। जब लग कजोत काया मह बरतै, आपा कछु न बूझै, लालच करै

जब लग जोत कायम है वरत आपा पशु न बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझै कहत कबीर सुनहरे प्राणी छोड़ो मन के परमा केवल नाम जपोरे प्राणी परों एक की शरणा कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के परमा केवल नाम जपो रे प्राणी परों एक की शरणा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

दूर अगर तुआओ द्वापर अगमे का सत अगर तुआओ कलयुग रथ अग्न का कूड़ अगर तुआओ शाम कैसे सम्र स्वामी सत में अच्छा सज रहा है।

उस फौज ने सरकारी चौधरियां की मदद नाल सिखा उत्ते सख्ती का हुक्म दे दिता। बहुते सिख तिल छड़ के जंगलों में चले गए। जे कि उन्होंने अणवसनी सिपाही फौज नाल टकरा हो जाता तो वह मर्दा वांग लड़ते हुए शहीद हो जाते। इस तरह दिहाड़े निभ रहे सन जां शाही फौज ने भाई तारा सिंह जी पिंड वाह वाले उत्ते हमला कर दिता। वह दुश्मन दल का टाकरा करते हुए मैदान में शहीद हो गई। भाई तारा सिंह जी सारे सिख समाज में संतां वांग पूजे जाते सन। उन्होंने शहादत ने सिखों में रोह भर दिता। इलाके विचों दूर गए हुए जंगी सिंह वापस परत आए ते कुछ वाही करन वाले सिंह हथियार फड़ के उन्हां दे नाल रल गए। भड़के हुए सिंह लगे राह मारन। ओ कदे भी आम जनता नूं कुछ ना कहंदे।

तर मी आता एक शुरू होते नतीजा ये निकलिया के पखंदरों की पोल तुम्मा जिस समझोए ना वांगू बतात लोग पेख दे पिछे लग तुवे मनो धर्म पैदा होने की थावे धर्म की थां एक भरम पैदा हो गया ते भरम कहंदे उस नूं जो कुछ कोई समझे ओ ना होवे। गुरु साहब ने बाणी विच आख्या कहने लगे

0: क्या कही है परम ऐसा जैसा मानिए हो ना तैसा।
1: ए परम है परमाणु कहते हैं जरा असलियत की नकल होवे जिथे मनु भुल सके जरा असलियत की नकल होवे जरा धर्म का भेख धारण कर ले वो परम है जिंदा भुलेखा पै जाए कि यह धर्म है पर होवे ना। गुरु कहते हैं कि परम की निशानी की है जो जा समझिए ना हो अगे एग्जाम्पल देंगे दें।

0: सुपने में भिखारी हो गया, पर भिखारी है नहीं, है राजा। हुण जिहड़ा भिखारी होण दा भरम है ना, ओह ही दुखी कर रहा है, असल दुख ओह है।
1: सुपने भयो भिखारी अछुत राज बिछरत दुख पाया, तो गत भई हा

तन का शिंगार की है। तन ने मर जाने उन्हें जिन्ना मर्जी शिंगारना है, जिन्ने मर्जी खूबसूरत कपड़े पवा ले, जिन्ने मर्जी हार शिंगार करा ले, तन तन के शिंगारा ने खूबसूरत नहीं होना। लख सिंगार बनाया कार्ज ना ही केत, जित दिन दे बिनसती तवेले कैसन प्रेत, जिन्ने मर्जी सिंगार कर ले। जिस वेले दे बिनसती तेन प्रेत आखे, इस देह नु सिंगार सिंगार रख के लोगों नु भरम ते भुलेखे पाउण वाले, तैनू पता होवे जिस दिन तैनू जम लैके गए उन्हें दसना भी नहीं किथे लैके चल रहे हैं। वो एवं सोचते रहे कि महापुरुषा जी स्वर्ग विच गए, सानू भी लै जाएंगे। मैं ऐसे महापुरुष अज भी दुनिया विच देखना जेडे किसे दे अंत समय आखते ने मैं तुर पटा के आया, मैं तुर आप पहुंचा के आया। पलिया तेन तेरे अपना नहीं पता तू कि जाना है। पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी भेद, कहन लगे छड़ खड़ोते तन की हालत, तन की वैल्यू तो यह है कि छड़ खड़ोते खिने माए जिनसों लगा हेत। तन तो हर एक का बुढ़ा भी होना है, हर एक का तन जाना भी जाना है। हाथ मरोड़े तन कपे स्याहो होवा सेत, हाथ मुड़ जाएंगे तन कंबेगा स्या काला दाड़ा जेड़ा है उस सेत सफेद हो जाएगा, बुढ़े पवी आवेगा। पर जिहा बीजे सोलने कर्म संदड़ा खेत। गुरु समझाते ने हे दुनिया के लोगों एक ख्याल करो, बारिश तो पई पर इस बारिश के नाल नाल जे हौ टिक गई तो फिर इसे ही सावन के महीने ने भादों का महीना बन जाना है। ते भादों की गर्मी हाड़ की गर्मी नालों ज्यादा खतरनाक होंगी है। भादों में सावन के महीने दारिशा पै पै के इन्ना माहौल बदल जाता है कि भादों के महीने जिथे कुछ सुख ने उथे नाल दुख भी पैदा हो जाते हैं। गुरु नानक पातशाह जी ने भी आख दिता कह लगे भरम भुली भर जो

जे पेखधारी हां तो तपत तो बच निकले गुरु नाल जुड़ जाए तो फिर गुरु रखण वाला है। गुरु तेनों मुड़ उस अखाड़ नालों भी बुरी भरमा की तपत विच नहीं रहन देगा। गुरु का काम ही भरमा तो कढ़ना है। बाबा कबीर ने आख्या माए मुंडो तिस गुरु की जाते भरम ना जाए। गुरु कहता जिंदे होंदिया भरमा विच पिया रहे से, जिंदे होंदिया फिर मनुख भेखधारियों के पिछे दौड़िया फिरे नहीं। गुरु कहते हैं भेखधारी के नाल जुड़ना मानो हार नालों भी खतरनाक गर्मी नाल संबंधित हो जाना है। भेख जिहड़ा है भेख एक अधर्म नालों ज्यादा खतरनाक है, जिंदे विच मनुख अपने आप नूं धर्मी समझ लैंदा है। गुरु कहते हैं उन्दे कोलों बचा इको है कि जे तू अपना हेत प्यार गुरु नाल पैदा करें तैनू किसी भेखधारी के पिछे ना जाना पवे, फिर तेरा बनिया होया सावन की शीतलता का रुप का माहौल यह बनिया रहेगा। भादों की पड़ास नहीं निकलेगी, गुरु बख्शिश करे साडे जीवन का माहौल बरखा रुप की वह शीतलता बने जिंदे लई कभी असी अरदास की सी प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं। नानक की अरदास वो अरदास जिहड़ी सी वह बनी सी सावन का महीना। फिर अषाढ़ सोहम दा पिस लगे जिस मन हर चरण निवास बनी सी सावन दा महीना। गुरु बख्शिश करे उसी तो तब बन आवे। अगला प्रोग्राम जिहड़ा क्योंकि सर्दियों की रुत दी आमद है, इस तो बाद आमद का प्रतीक हो जाता है। हुण हाड़ तो बाद सावन भादरों तो बाद